کی جا چکے ہیں یہ سسمیلانوں کے دوران کئی متوپور دستوین سویکار کیے گئے تدھا پرتیک سمیلانوں کے آنت میں گوشنائے اور انتیم دستویز بہے پریت کیے گئے یہ دستویز جل سنبندی ہے سمسیو پریوارن سنرکشن اور جلویو پریوارتن جیسے چونوتیو کے سمد دہن کے لئے نکول ادھار اور پرستاتیا پردہن کر سکتے ہیں ساتھ ہی یہ سپراکار کے اچاچ استرے سمیلان ترشتے سائیو کو مضبوط کرنے انو بہوان کے ادن پردہن تتھا ویش سمودائی کا دیان ماتاپور پریوارنیا مدو کی اور ارکش کرنے میں بری بومی کا نپاتی ہے تاجکستان اپنی رشنت ماں کا پالوں کے مدین سے یہ صدح کر رہا ہے کہ وہ جال اور جلویو سے سمبندی ہے ویشوا کا سمسیوں کے سمدان میں سکریا اور پروشیلے بومی کا نپا رہا ہے سمیلانو پستیتی کے روپ میں آیوجیت کیا جاتا ہے اور اس میں بہو پاکشا درشتیکون شامل ہوتا ہے इसमें भाग लेने के लिए सरकारों और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्र संगठनों वित्तीय अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों को निजी क्षेत्र सार्वजनिक संगठनों और नागरिक समाजवादी और जिहेल बेसिन संगठनों के साथ साथ महिलाओं युवाओं और बच्चों के संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है सम्मेलन के दंश के बेहतर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो प्रतिभागियों को ताजिक लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होने का अवसर प्रदान करेंगे इन आयोजनों में ताजिकिस्तान के सभी क्षेत्रों के सांस्कृतिक और पारंपरिक तत्व जिनमें अनुष्ठान लोक शिलाप पियंजान राष्ट्र कपड़े और ताजिक कला शामिल है प्रस्तुत किए जाते हैं और साथ ही आगंतुकों को हमारे देश के सुंदर प्राकृतिक सफपानी और महान बिजली संयंत्रों के बारे में पता चलता है दुशंबे जल प्राकृतिक को छोटा सम्मेलन ताजिकिस्तान उसकी उपलब्धियों और निवेश के अवसरों को प्रस्तुत करने और प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के जोखिम को कम करने के दिशा में सहयोग को मजबूत करने के एक अच्छा अवसर है इस सम्मेलन के आयोजन और दशा के कार्यान्वयन से ताजिकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी और देश का प्रभाव और बेहे अधिक बढ़ेगा दुशंबे जल प्राकृतिक सचिवालय के जानकारी के अनुसार ये उच्च स्तरीय आयोजन 2018 में दुशंबे में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन के आयोजन के व्यापक तैयारी के लिए विभिन्न इच्छुक पक्षों के व्यापक और मुक्त संवाद के क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे प्रेषित तो आपने छोटे उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दुशंबे जल प्राकृतिक के आयोजन के बारे में जल और जलवायु कार्यक्रम सुना हमारे दूसरे प्रसारण जा रहे हैं हमारे रेडियो के साथ रहिए।